0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंका हंड
1: विलाव पेरवेरे कलहाय
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता कबने कोटी अटे एनएलबी तनडे तहने नुतराईन प्रति संवर्धनेट तनंत शक्तियक वेमिन ओबत दिनवा रटत दिनवट तन निदहने बिलदीगेन ओबत कोटीपतिय कुवन

0: पायसट गया थावसट गेदर की वाटे आवसट गेदर याने गतवाई अमारुम वेली
1: सलन ललन दलुव विलस नितंब नलोला नितंब नलोला नितंब नलोला
2: इंदाल मेंदाल याना तेरी नवदिल्लो इविनी ट्राई।

ज्यूते के इन्नो आगे फ्यूचर के प्लस पॉइंट है काक आरडीबी यूथ प्लस विशेष प्रतिलाभ रसाक समगिंग यूथ के नम सेट ना बैंकिंग पार्टनर आरडीबी यूथ प्लस कीनुमा ओबा विनुएनमा।